0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया ना किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जान

जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए

नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़े एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क

में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी

0: की मूर्तियों को प्राथमिकता दें और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ഇനി 2 മണിക്ക് മിഡ് ഡേ ന്യൂസ്.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
2: कोलकाता में INS Dhunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
1: The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
2: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये

0: जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना सम्बन्धि कार्यक्रमं सम्बोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामि गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मयमूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे

0: she has enough batting power. But the, today is the day when she has to get her rhythm back. And against Australia, she's always scored the runs. She's always been the most valuable player. Unfortunately, all the 450s that she has scored in T20s have come against whenever India have lost. Shayad today is the day when the equation will change.
1: ख्याति हमने बहुत बात की भारतीय टीम की, थोड़ी चर्चा ऑस्ट्रेलिया की भी कर लेते हैं, किस रणनीति के साथ वो इस मैच में उतरेंगे।
2: देखिए अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे उनका पेस अटैक काफ़ी अच्छा है, तो ये कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन स्मृति मंदाना एंड शेफाली वर्मा अलॉन्ग विद दीज आई मीन इन फ्रंट ऑफ दीज ऑस्ट्रेलियन बोलर्स और एशले गार्डनर एंड हरमन के उसमें। तो आई थिंक डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट कौन बॉल टू बॉल जीतता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सर ऑल्सो सेड कि ये पूरा 40 ओवर्स लास्ट बॉल तक आप इस गेम को किस तरीके से खेलते हैं वो उस पर बहुत निर्भर करता है।
3: और वही एलिस पेरी भी रन बनाए पाकिस्तान के विरुद्ध, पहला T20 विश्व कप का अर्धशतक जड़ा, दो विकेट भी निकाले, तो उस मोमेंटम के साथ और भी आगे बुनाना चाहेंगे। रविंदर
4: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऑस्ट्रेलिया अनबीटन साइड है देखिए अभी तक, उनमें अभी ज्यादा कुछ कमियां दिख नहीं रही क्योंकि अभी तक हारी नहीं टीम। जब टीम हारती है तभी आपकी कमियां निकल के आती हैं, जीत जाने पे सारी कमियां छुप जाती हैं। अगर उस दिन भी अफ्रीका के अंग्रेज हम मैच जीत जाते लास्ट में तो सारी राधा यादव को कोई याद भी नहीं कर रहा होता। आज भी इनको इसलिए याद करा जा रहा है कि इंडिया मैच हार गई। तो ये डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है उनका, यही अब ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो एपिक जो राइवलरी है वो आज देखने को मिल रही है। डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, आप जो पहले बैटिंग करने जा रहे हैं आपने डिसीजन लिया अच्छा लिया, रीजन पॉजिटिव रीजन है क्योंकि इतने बड़े प्रेशर मैच में आपको पहले अगर आप रन बना देते हैं तो बढ़िया है। अगर ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग करते 180 नंबर रन बनाते तो चेस करने बहुत प्रेशर होता, लेकिन बढ़िया आप 6 ओवर पहले संभल के लिए 40 रन का टारगेट रखिए, विकेट मत दीजिए आप, और उसके बाद धीरे धीरे इसको टीम अपना बिल्डअप करेंगे तो आप 20 ओवर में 180 के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लूज की विकेट शुरू में पावर प्ले में तब वापस आपको दिक्कत आ जाएगी।
1: सौमित्रो हमने कई खिलाड़ियों की चर्चा की, लेकिन अगर आज भारत को बड़ा टोटल बनाना है तो ऋचा घोष को बहुत बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि तीन ऐसे इस टीम में प्लेयर हैं जिनके पास बल्लेबाजी का अनुभव नहीं है। और टी ट्वेंटी में टेल अगर की बात करें तो भारतीय टेल थोड़ी लंबी नजर आती है।
0: देखिए ऋचा घोष का नाम आपने जिक्र किया, बैटिंग कहाँ करेंगे, 4 नंबर में किया, 7 नंबर में किया, 6 नंबर में किया, आज कहाँ करेंगे, वही तो सवाल मैंने पहले भी पूछा है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। एंड डोंट फॉरगेट देयर इज समबडी कॉल्ड दीप्ति शर्मा, शी इज लाइक द रविंद्र जडेजा ऑफ इंडियन टीम, कहीं पे भी बैट कर सकते, कभी भी विकेट ले सकते, मोस्ट बिजिएस्ट क्रिकेटर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि यू कांट गो विद अ सेट प्लान, कोच साहब ने कहा ही है यू कांट गो विद अ सेट प्लान, यू कैन नेवर गो विद अ सेट प्लान, बट यू वुड एक्सपेक्ट दैट योर मेन प्लेयर्स विल स्कोर द रन्स, right? So what is a good score? Nobody knows. 160 perhaps. So there are a lot of questions. And that's the beauty of these contests like between India and Australia. You don't know. There are so many factors that you cannot control. What you can control is what you can do. Like, you know, he said maybe 40 runs in the 10 overs. Hold your wickets. So fascinating. I mean, that's why India, Australia, England, Australia, these are big matches. And big matches, you can't go with the plan. You play on the day. Face the circumstances, play the conditions, and go on.
3: Talking about questions, at the start of the year, Sophie Molino was anointed the captain. There were question marks around her fitness, whether she'd be able to lead Australia during the World Cup. Not only has she shown herself to be fit enough, she's also delivered consistently 6 wickets in 4 games. Khyati.
2: Yeah, definitely. I mean, if you see that, like Litchfield also, they want to play against India because they have that hunger and they still remember the ODI World Cup and they were waiting for this game and they will give their best for this game and they are coming up with the best team and I'm sure that she will deliver.
1: शेफाली वर्मा पर दबाव होगा रविंदर, चूंकि तेज तर्रार शुरुआत के लिए वो जानी जाती हैं, अच्छी फॉर्म भी दिखाई है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने पारियां खेली हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम बड़ा मुकाबला।
4: देखिए शेफाली एक बहुत बड़ी प्लेयर है, इंपैक्ट प्लेयर है, वो जिस हिसाब से बैटिंग करती है, जैसे वीरेंद्र सहवाग वगैरह बैटिंग करते थे, अगर वो 6 ओवर में उनको वो रहती हैं स्टार्ट देती हैं तो उसके बाद अगर वो विकेट्स पे रहती हैं तो ये मैच इंडिया बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव अप्रोच है, उनकी जो बाउंड्रीज निकालना है वो और इवन किसी भी प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं जितनी आसानी से शेफाली निकाल पाती हैं। शेफाली उनकी बल्कि ऑस्ट्रेलियंस की वेट लिस्ट में होंगी कि उनको पहले आउट करना चाहेंगे शेफाली को जरूर, वो क्योंकि उनको पता है शेफाली बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, उनको जितना लंबा खड़ी रहेंगी उतना इंडिया के लिए बेटर रहेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, शेफाली से उम्मीदें होंगी। लॉर्ड्स की इस ऐतिहासिक पिच पर एक मजबूत स्कोर सिर्फ स्कोर बोर्ड पर अंक नहीं जोड़ता।

0: कि विपक्षी टीम के मन में भी सवाल खड़े कर देता है। अब निगाहें होंगी भारतीय टॉप ऑर्डर की ठोस शुरुआत पर, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी पर और अंत के ओवर में तेज गति से रन बटोरने की क्षमता पर। फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही। रविंदर जी आपका, ख्याति गुलानी आपका और सौमित्र बोस आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: फर्स्ट बॉल 20।
3: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
4: T20 महिला विश्व कप जो टीम आज लॉस्ट ऑस्ट्रेलिया, और भारत के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का ये मुकाबला भारत को जीतना होगा अगर भारत सेमीफाइनल में अपना दाखला चाहता है। इससे पहले कि ये मुकाबला शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि आज की टीमें किस तरह से हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेल रही है उसमें खिलाड़ी हैं पैट मूनी, जॉर्जिया वॉन, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, जॉर्जिया बेरफिन, एनिबल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोनिलू, लूसी हैमिल्टन, किम गार्ड और फीबी लिचफील्ड। और भारत की तरफ से जो टीम खेली जा रही है उनमें शामिल हैं स्मृति, शफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत, जमीमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरनी, रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड को आज के इस मुकाबले में शामिल किया गया है। जिन्होंने अपने रेडियो सेट्स अभी अभी ट्यून किए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और पिच को अगर देखा जाए तो पिच पर घास है जो ये बताती है कि गेंद में गति और उछाल देखने को मिलेगी और घास सूखी है जो ये बताती है कि बल्ले के ऊपर गेंद अच्छे से आएगा और रन ज़्यादा यहाँ पर बनने की संभावना। और मेरे साथ हैं अश्विन। नमस्कार अश्विन।
5: थैंक यू। Thank you, Bhupinder ji. It was as you mentioned, it is a very important match from India's perspective. This is slated to be a kind of a quarterfinal match where India, it's a do or die game for India. They need to win this match if they have to progress from here to play in the further in the journey of the World Cup. So this is being a very critical match for India, and as you mentioned, there's only one change for India where Kranti Gaur comes in place of Nandini Sharma, and that's a good move because this match is going to happen at Lords, which will prefer the pace and the variable bounce, which is very important. So I feel that's a great change for Indian team that has happened in this match, and so we are all looking in very exciting times for Indian cricket, and they are all set to prove and play the kind of cricket that Indian fans are looking for, Bhupinder ji.
6: और आरंभक बल्लेबाज के रूप में शफाली वर्मा और स्मृति इस समय क्रीज पर हैं और मुकाबला शुरू होने को है। शफाली वर्मा जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म में है, नीदरलैंड्स के विरुद्ध शानदार 55 रन की पारी उन्होंने खेली थी, विकेटों के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए थे, 38 गेंदों में ये 55 रन उन्होंने बनाए थे और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी 31 रन की शानदार पारी थी और बांग्लादेश के विरुद्ध भी अर्धशतक बनाया था। स्मृति मानधना इस समय स्ट्राइक पर और लूसी हैमिल्टन की ये पहली गेंद, बाएं हाथ की तेज गति की गेंदबाज लूसी हैमिल्टन जिन्होंने स्टंप्स के बीचों बीच गुड लेंथ पर ये गेंद डाली थी जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला था स्मृति मानधना ने। लूसी हैमिल्टन एक बार फिर से ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मगर सीधा मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर के पास, रन बनने की कोई संभावना नहीं। आरंभक जो बल्लेबाज हैं भारत के वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पारी में अगर मजबूती बनानी है तो आरंभक जोड़ी से साझेदारी दरकार होगी भारतीय टीम को, और इस बात को बखूबी जानती हैं ये दोनों बल्लेबाज शफाली वर्मा और स्मृति। स्मृति सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया गया डीप फाइन लेग क्षेत्र पर, रन भागने का मौका स्मृति के पास, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया जाए एक रन भागने का मौका, भारत का खाता खुला, स्मृति एक भारत एक बिना किसी विकेट पर।

0: लूसी हैमिल्टन, जिनकी गेंदों में थोड़ा उछाल, थोड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। इन तीनों गेंदों में उन्होंने इन स्विंग डाली है स्मृति मानधना को, और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इन गेंदों को खेला है स्मृति ने, जो ये बताता है कि पूरी तरह से आत्मविश्वास में, फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत रहेगी भारत को यहां पर। तीन गेंदों में एक रन, लूसी हैमिल्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करती हुई, शफाली वर्मा अब सामना करेंगी। ओवर द विकेट लूसी हैमिल्टन की ये गेंद, ओवर पिच कवर ड्राइव किया मगर स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं, सीधी फील्डर के हाथ में गेंद, जिसकी वजह से रन बनने की कोई संभावना नहीं। शफाली वर्मा ने ये पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेली। शफाली वर्मा का बल्ला बुलंद है इस वर्ल्ड कप में, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध काफी आत्मविश्वास से खेली हैं वो, विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं, और इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी में ये देखा गया कि ज्यादा क्रॉस बैट से नहीं खेल रही हैं, विशेष तौर पर स्पिन गेंदबाजी के सामने वी शेप में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया है। लूसी की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे कट किया, बैकफुट पॉइंट क्षेत्र पर, जब तक अपनी बाई तरफ भाग कर गेंद को फील्ड करेंगी डीप बैकवर्ड पॉइंट से फील्डर, एक रन भागने का मौका शफाली वर्मा के पास। पांच गेंदों में दो रन भारत के इस पहले ओवर में। लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला, विकेट अब तक बिल्कुल सटीक सपाट, बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आती हुई। लूसी की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी, सीधी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव करना चाहती थी, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागकर एक रन पूरा किया। एक रन के साथ भारत का स्कोर 3 इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Cautious start by India here at the crucial match. India after first over, they are 3 without loss. So Smriti Mandhana and Shefali Verma doing what they're supposed to. They are not taking anything lightly. They are positioning, waiting for the ball, and that's what they're going to do, because this match is going to be a crucial and very crucial for India's point of view, because these two players need to put in a partnership, put runs on board. They have won the toss. They need to put runs on board and to put pressure in. Australia's mighty powerful Australians, yet they need to do something different. This time Kim Garth is now bowling from further end from us, and Smriti is going to take the strike. Goodland delivery, no movement there of footwork, plays with a soft hand back to the bowler, and no damage done. So 1.1 over, 3 runs without loss, Shefali Verma and Smriti Mandhana at crease. And as I mentioned, this is going to be a very, very important match for India if they are to progress further in the World Cup. And they need to do something which builds a platform, and then later on when Jemima Rodrigues, Harmanpreet and Richa Ghosh comes in, that they give a platform to go. Legs delivery on the middle stump, slashes it down to boundary line, going in the area of deep mid wicket for 4 runs. What a great shot this has been.
5: Ye laga Abha ka choka.
4: She actually got the ball quite early. There was a great movement, places herself in the middle and middles that ball towards the square leg boundary for 4. A lovely shot coming on from Smriti. That shows the confidence that she has. She's middling all really well and very calm-headed. Gets the first boundary for India. India now 7 without loss. 1.2 overs. Here's Kim Garth for the third delivery. Goes farther from the umpire. Again, a short length delivery. Drives in the same direction. And the same results again. And a very, very similar shot, this one, and gets boundary for her.
5: Ye laga Abha ka choka.
4: So two boundaries coming off two balls, that sets the Indian that they are not going to take anything lightly. Again, a similar kind of ball, positions herself, went on the back foot and drives it along the ground, and no chase possible for the fielders there. Got two boundaries.

0: Boundaries, two valuable boundaries for India. India score moves on to 11. 1.3 overs, 11 without loss. If you look at the fielding position, there's one gully, point, cover, deep cover, mid on, mid off. This is the ball which she waited for it to play it with the soft hand. And by the time ball rests to cover region, no damage done. Batsman still intact in her crease. Shefali at the other end haven't faced much balls today. She is just faced two balls and scored a single in that. 1.4 overs gone, 11 without loss, India. It needs to be seen that what intent they need to show. Again, went to the backfield, drives it nicely, but there's a good fielding there at the point region. And with that nicely collected throw back to the wicketkeeper, and there's a kind of clapping between the Australians. They are boosting each other's confidence here. 11 for no loss, second over in progress. So India starting cautious. There's nothing they are going to give away in there. Both the shots that they have played today, it's all along the ground that we could see. And that's what the coach Amol Mazumdar wanted from these two, to spend some time in the middle, see the ball nicely, and then they change, shift the gears. This time on the leg side, there was a bad delivery, I would say. Glanced it down, she missed an opportunity to drive it, and that ends the over number two. India 11 without loss.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। आईसीसी टी20 मुकाबलों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 53 मैचेस खेले हैं, 43 जीते हैं, 9 हारे हैं और एक मैच टाई रहा है। इस बीच लूसी हैमिल्टन अपने नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे ड्राइव स्केयर ड्राइव किया शेफाली वर्मा ने। डीप कवर से जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, भागकर एक रन पूरा किया। भारत का स्कोर 2.1 ओवर के बाद 12 बिना किसी विकेट पर। और आईसीसी महिला विश्व कप टी20 मुकाबलों में अगर भारत की भागीदारी की अगर बात की जाए तो भारत ने अब तक 44 मैचेस खेले हैं, 25 जीते हैं, 19 हारे हैं। धन्यवाद जतिन सूद इस जानकारी के लिए। इस बीच लूसी हैमिल्टन की ये गेंद गुड लेंथ स्टंप के बीचों बीच, और स्मृति ने ये देखा कि हैमिल्टन की गेंदों में ज़्यादा गति नहीं है, तो इस बार वो कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी, मगर गेंद से दूर रही, जिसकी वजह से हल्का सा धकेला उसे मिडॉन की तरफ, जहां पर फील्डर मौजूद, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पिछले ओवर में स्मृति ने अश्विन जो दो स्ट्रोक्स खेले बैकफुट पर जाकर, जिस तरह से ऑन ड्राइव लगाए उन्होंने, क्या टाइमिंग थी उनकी, बड़ी खूबसूरत टाइमिंग के साथ वो स्ट्रोक्स खेले थे। इस बीच इन स्विंग गेंद अंदर की तरफ आती हुई मिडल और लेग स्टंप पर, जिसे सीधे बल्ले से मिडॉन क्षेत्र पर खेला गया बगैर किसी रन के, और कमाल की टाइमिंग से खेल रही हैं। और दोनों बल्लेबाजों की जो अप्रोच है, उससे लग रहा है कि उनको मालूम है कि उन्हें लंबा खेलना है, साझेदारी बनानी है और एक अच्छा लक्ष्य देना है ऑस्ट्रेलिया को। 12 भारत बिना किसी विकेट पर 2.3 ओवर के बाद। लूसी हैमिल्टन प्रभावशाली गेंदबाजी करती हुई, इस बीच शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर भाग रही है गेंद के पीछे, डाइव किया मगर रोक नहीं पाई, 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: स्मृति को मौका मिला और इस मौके को पूरी तरह से भुनाया उन्होंने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को पुल किया उस क्षेत्र में जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। स्क्वायर लेग पर खड़ी फील्डर ने हालांकि कोशिश की गेंद को रोकने के लिए, मगर सफल नहीं हो पाए। एक चौका स्मृति और भारत के खाते में। 16 भारत बिना किसी विकेट पर 2.4 ओवर के बाद। इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं, 2 गेंदे बाकी। स्मृति सामने है लूसी हैमिल्टन के, गुड लेंथ गेंद जिसमें ज्यादा गति नहीं थी, थोड़ा सा लहराव अंदर की तरफ आती हुई, सीधे बल्ले से इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला गया। किसी तरह का जोखिम नहीं ले रहे हैं अश्विन दोनों बल्लेबाज, वो जानते हैं कि विकेट को सुरक्षित रखना काफी जरूरी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। अभी तक कोई भी हवाई स्ट्रोक दोनों बल्लेबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिला है। इस ओवर की आखिरी गेंद, भारत को यह मुकाबला जीतना ही होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मुकाबला जीत चुका है। लूसी की यह गेंद गुड लेंथ गेंद, ड्राइव करना चाहती थी, बीट हुई, भाग्यशाली रही कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद

0: भारत 16 बिना किसी विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: So that was a great start from India. One, another boundary coming in from Smriti's bat in this over. So three boundaries for her in her brief score of 14 runs or 15 deliveries. Shefali Verma hasn't gotten much opportunity as of now. She's just faced three deliveries, scored a single. But now this over, she's going to be on strike after Smriti Mandhana was beaten on the last ball of Lucy Hamilton. Matchups we need to see. I was waiting for Ashley Gardner to come, and this time Shefali Verma goes over the bowler's head on the long off region for a beautiful, beautiful boundary. What a boundary this was from Shefali's bat.
5: Ye laga Abha ka chauka.
4: We were waiting for this. Shefali was itching one to join Smriti Mandhana. She has scored three boundaries, and you can see that there's a kind of competition, Birinder Jain, between them this time again. Ashley Gardner, again, the tossed up delivery, but played very carefully along the ground. The ball, by the time, rolls down to long on region. Batsmen, both the batters have enough time to cross for a single, and that moves the team score to 21 without loss with four boundaries in this. So that's a cautious start, and all boundaries are coming along the ground. So that was a great sign for Indian team that they are not going to go anything in the air unless that ball's demands or invites them to come and launch it over the boundary. So 3.2 overs, 21 without loss. Smriti on 14 or 15 delivery. Shefali on 7. This time Smriti Mandhana again cautious, went on the back foot. There was a good length ball, went back and drives it down to the mid-off region. So no damage done. 3.3 overs gone, 21 without loss, four boundaries of Indian. And Ashley Gardner, if you look at matchup, she has actually taken Smriti Mandhana for cleaners. She has actually taken 10 dismissals against her. So there was a good matchup for Ashley Gardner and Smriti, and that makes Smriti more conscious. This time she drives, dances down the wicket, plays on foot, full toss, and enough time to cross for a single. So Shefali on strike, 22 without loss, 3.4 overs gone. This time Shefali again on the rise, picks it up and over the boundary for a sixer.
5: Ye laga Abha ka chakka.
4: This was outside the off stump, loose delivery, and Shefali is not going to give away anything on that. And she actually targets the loose delivery, and she was on to the target, launches it over the long off boundary for six. So 1-6 and 1-4 off Ashley Gardner. She is one of the most successful bowler of Australia, and they were actually trying, but Shefali Verma comes on top of the ball and launches it over for a six. That moves Indian score to 28 with 1-6 and 4 boundaries, and 3.5 over was 28 without loss, again in the air, but lands safely on the left hand side of Ashley Gardner, and that brings to end of Ashley Gardner's over. She has given 13 runs in that over, and Indian score 29 without loss at the end of 4.
0: Kamal ki ballebazi rahi hai is over mein Shefali Verma ki. Ashwin, jis tarah se flighted gendon par उठाकर ऊंचे स्ट्रोक्स खेले हैं शेफाली वर्मा ने, पहला मिड ऑफ के ऊपर से चार रन के लिए, और दूसरा तो कमाल का स्ट्रोक था कवर्स के ऊपर से छह रन के लिए. और इस वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा ने स्पिन गेंदबाजी पर जिस तरह से आक्रमण किया है वो दर्शनीय है. बांग्लादेश के विरुद्ध भी जो 53 रन की पारी उन्होंने खेली थी 24 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था, उसमें भी हमने देखा कि स्पिन गेंदबाजी को वी में उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास किया है. पावर प्ले में जबकि घेरे में ज्यादातर फील्डर्स, घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स हैं, और मिड ऑफ के ऊपर से जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं वो दर्शनीय है, काबिले तारीफ है, और बिल्कुल सही है इस मुकाबले में भारत के लिए जिस तरह से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है भारत को. तो भारत का स्कोर 29 चार ओवर्स की समाप्ति के बाद. शेफाली वर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 14 रन पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद, और स्मृति है 15 पर 17 गेंदों का सामना करने के बाद. नए ओवर की शुरुआत पैरी करती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन, लूसी हैमिल्टन की जगह पर पैरी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. रनों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई, आत्मविश्वास में आते हुए ये दोनों बल्लेबाज, और प्रहार करते हुए, आक्रमण करते हुए.

0: ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के ऊपर, और ये जरूरी है और एक साझेदारी की जरूरत है भारत को। 4.1 ओवर के बाद भारत 29 बिना किसी विकेट पर। शफाली वर्मा है सामने पैरी के, ओवर द विकेट, लंबी ऊंची कद की पैरी, मिडल और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद फ्लिक करना चाहती थी, बीट हुई मगर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। भारत का स्कोर हुआ 30 बिना किसी विकेट पर। अच्छी क्रिकेट यहां पर लॉर्ड्स के इस मैदान में, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला, इस मुकाबले को जीतना ही होगा और जीत के लिए चाहिए एक अच्छा लक्ष्य जो कि ऑस्ट्रेलिया को देना होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सके, और इसके लिए जरूरी है साझेदारी का होना और गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण का करना। गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, स्टीयर करना चाहती थी, बीट हुई, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी करती हुई पैरी, 114.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फेंकी हुई गेंद, हालांकि हवा में ज्यादा स्विंग नहीं और टिप्पा खाने के बाद भी गेंद सीधी रही मगर स्टीयर करने के प्रयास में बीट हुई थी शफाली वर्मा, जो कि इस समय 9 गेंदों का सामना करने के बाद 14 पर बल्लेबाजी कर रही है। 30 भारत का स्कोर 4.2 ओवर के बाद। पैरी की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर इसे फ्लिक किया, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है वहां पर, जब तक गार्डनर थ्रो करेंगी बेथ मूनी के दस्तानों में एक रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 15-15 दोनों का स्कोर, स्मृति और शफाली का अच्छी बल्लेबाजी करती हुई। 4.3 ओवर के बाद भारत 31 बिना किसी विकेट पर। स्मृति सामना करेंगी पैरी का, इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं एक बल्ले से और एक वाइट बॉल की मदद से। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति अच्छी टाइमिंग से आज बल्लेबाजी कर रही हैं, 2 खूबसूरत बैकफुट पर ऑन ड्राइव खेले हैं उन्होंने। अराउंड द विकेट स्मृति के लिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करना चाहती थी, पैड से टकराई, हालांकि हल्की सी LBW की अपील भी की गई मगर खुद गेंदबाज ये जानती थी कि ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी इसीलिए अपील में ज्यादा प्रभाव नहीं, और स्मृति अपने आप से नाखुश होती हुई, वो जानती हैं कि ये कमजोर गेंद थी और पुल शॉट खेलकर रन बटोरे जा सकते थे इस गेंद पर मगर सफल नहीं हो पाए। 31 भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर 4.4 ओवर के बाद। पैरी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अराउंड द विकेट, इस बार ये लेग स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के पार जा रही है, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: कमजोर गेंद और इससे पहले भी कमजोर गेंद थी जिसको भुना नहीं पाई थी स्मृति मगर इस बार चूकी नहीं वो और सफाई से पुल शॉट को खेला गया गैप में जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। 35 हुआ भारत का स्कोर, 19 पर पहुंची स्मृति 19 गेंदों का सामना करने के बाद जिसमें 4 शानदार चौके शामिल हैं। पैरी अराउंड द विकेट, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर पुल किया गया मगर इस बार डीप मिड विकेट क्षेत्र पर जहां पर फील्डर मौजूद थी और एक रन भागने का मौका। 5 ओवर्स के बाद भारत 36 बिना किसी विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में,
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: At the end of over number 5, India 35 without loss. And what the best thing that Indians are doing currently is they're picking boundaries. After first over, there was only 3 runs. But after that, every over, they picked up the boundaries. And they're ensuring that the run rate doesn't fall below. And they want to put a great total in the power play and then a launch pad for the batters to come in or shift their gears. So fantastic placements, great footwork there by both the batsmen. And it's interesting to see what Sophie Minilu will do now, because in the last over, we have seen Ashleigh Gardner went for runs, leaking runs. This time, a ball pitched on the middle stump, but short pitch delivery driven down by Smriti Mandhana for a single. So Smriti went on to 21 of 21 deliveries, where there's a good healthy competition going on between these two. Shefali Verma on 15 of 10 deliveries, not too far, and she's joining the party. After 2 overs, she was like quiet on the other and resting, but then once she got the opportunity, she has shown her true colours. So 5.1 over, 37 without loss. Little bit of stress in Australian dressing room and captains. This change in field placements because of left and right batting combination that brings in the field changing. So this time, Kim Garth now bowling to Shefali.

कवर की तरफ, लॉन्ग ऑफ से भागी फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें एक रन, भागने का मौका। गार्डनर ने स्मृति को 10 बार आउट किया है 31 T20 पारियों में। जतिन सूद हमारे स्टडी स्टेशन हमें बता रहे हैं और स्मृति को

0: से बीट हुई थी शफाली, दो गेंदों में एक रन, 55 भारत का स्कोर 8.2 ओवर के बाद। गार्डनर ओवर द विकेट, एक बार फिर से शफाली के लिए फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल, कवर क्षेत्र पर ड्राइव किया मगर फील्डर मौजूद है वहां पर, रन बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। 55 भारत का स्कोर 8.3 ओवर के बाद। फ्लाइट कर रही हैं गार्डनर, न्योता दे रही हैं और जिसे स्वीकार कर रही हैं शफाली वर्मा, बार बार कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव करने का प्रयास करती हैं वो, और अपने पहले स्पेल में अच्छा आक्रमण किया था। इस बार उठा दिया मिड विकेट की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार चली गई, हवाई रूट लेती हुई 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: मिडल स्टंप पर यह फ्लाइटेड गेंद थी जिसका पूरा इस्तेमाल किया शफाली वर्मा ने, और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए स्लॉग स्वीप किया इसे मिड विकेट क्षेत्र पर, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। 61 भारत का स्कोर। रनों की रफ्तार इस ओवर में तेज होती हुई, 7 रन आए हैं, 2 डॉट गेंदें, 1 छक्का और 1 सिंगल। एक बार फिर से फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद इस बार सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: आक्रमण करती हुई शफाली वर्मा, गार्डनर हालांकि फ्लाइट कर रही हैं गेंदों में और उस फ्लाइट के न्योते को पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है। शफाली वर्मा ने इस फुल टॉस गेंद को 4 रन में भुनाया। 65 हुआ भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर 8.5 ओवर के बाद। 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आक्रमण करती हुई दोनों भारतीय बल्लेबाज, 30 पर हैं स्मृति और शफाली इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 33 पर। गार्डनर एक बार फिर से ओवर द विकेट, एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, फिर से कदमों का इस्तेमाल किया गया, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर और 1 रन मिलेगा। 9 ओवर्स के बाद भारत 66 बिना किसी विकेट पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: So Indian Women Act playing according to the playbook was been prescribed to them by the coach. They have been very, very cautious. They know that Smriti Mandhana matchups with Ashley Gardner hasn't been that great. So she took a single, gave it to Shefali, and she launched her for a 6 and a 4. And Shefali more aggressive. This time she beats her, and Sophie Minula comes in and knocks her down. So that's the wicket number one. Australian skipper got the wicket of danger looking Shefali Verma, 66 for 1. Shefali was looking for a drive, full length delivery. She was trying to play it on the offside, misses it completely, and see her timber be broken with this. So that brings the first wicket and downfall of Shefali Verma. She was in a great nick here, but Sophie Minulo is doing what she does the best, Birinder ji.
0: और सोफी मोलिनू ने विकेट दिलाई है भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, और 34 रन पर ये पहला झटका भारत को, 34 रन पर आउट होकर शफाली वापस जा रही हैं। इस गेंद में फ्लाइट कम थी अश्विन, और कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से खेलना चाहती थी, और कम फ्लाइट होने के बावजूद टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी घूमी जिसकी वजह से स्टंप से जा टकराई और स्ट्रोक मिस कर गई शफाली, और एक अच्छी पारी समाप्त हुई इस तरह से, 34 रन की शानदार पारी 26 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। और जिस तरह से ये साझेदारी बनी है, ये ज़रूरी है कि इस लय को बरकरार रखना होगा, क्योंकि पावर प्ले अच्छी तरह से खेला गया है भारत की तरफ से, और अब जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि क्रीज पर टिका भी जाए और स्कोरबोर्ड को भी हरकत में रखा जाए। ये चुनौती काफ़ी मुश्किल है जिस तरह की ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी हो रही है, मगर इसे करना होगा भारतीय बल्लेबाजों को।
7: Precisely, and that's interesting to see who they send in next, whether it would be Ashtika Bhatia coming in. Generally, she comes at 3, but we need to see whether it's Jemima Roderick comes in. She has a great record against Australia, and she plays strokes along the ground. She's known for it. And yes, as we guessed, it is Jemima Roderick's coming in at number 6. So there's a bit of shuffle there.

0: and you can see the field being spread now. There are three women in the deep, and a lovely stroke play there by Jemima. Ball is rushing to fine leg region. There's one, two, and they should be looking for two and comfortable two. So this was a stroke that has been produced from nowhere. She played a scoop on the stroke. She was completely aware of the fielding position. She knew that there is no one at fine leg region, and that prompts her to drag the ball from the off stump. Before the delivery was bowled, she actually moved over to the off stump, placed it nicely to the fine leg region for two. So that brings India to 68, 9.2 overs this time. Chavez should be out, but no, this was a great elevation. She actually manages to go over the head of the player at cover region. So four runs to Jemima. And ye laga abha ka chauka. That boundary being 72, so there's no respite for Australians. Shefali went, Jemima comes with the same gear, same tone, and she picked up a boundary. So two balls she faced, and she picked up six runs. So 72 for one, and this is the 10th over in progress. So halfway mark we're reaching, and India looks to be in good position. This time nudges it, places it softly with the soft hand, bottom soft hand, and acrosses. By the time ball reaches to the extra cover region, the player has a time to cover for single. So 73 now, Indian score at the end of 9.4 overs. And Jemima, she is actually also a hockey player, and that gives her strength. She has a very good lower backhand, and that generates the power, and that's what she does the best. 9.4 overs, got 73 runs for loss of one wicket. 7.55 runs per over is the average for India per over, and I would say at the halfway mark India would take it. This time Shefali, this time Smriti Mandhana actually reaches the ball and plays along the ground. By the time ball reaches the long on region, she actually switches the end, and that takes Indian score to 74 for one. This is 9.4 overs, 9.5 overs have gone, so one more delivery to go in this over. And and sees Smriti Mandhana in 31. Now, what kind of approach they will have from here? Because as Birindaji, you mentioned that we need to be at the tempo. Cuts it down. Lovely stroke play, but similar kind of fielding there by Ashley Gardner. She actually dives it down, fields it, and throws it back to the keeper. This is Sutherland who fields it well, and that is the end of over number 10. 74 for one, India.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 74 एक विकेट पर, और सदरलैंड अपना नया ओवर शुरू कर रही हैं। पहली ही गेंद पैड से टकराई, LBW की अपील, और ऑस्ट्रेलियाई जो फील्डर्स हैं वो विचार कर रही हैं कि रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं। टाइमर चल रहा है, स्टंप के बीचों बीच ये गेंद थी जिसे बैकफुट पर जाकर ऑन ड्राइव करना चाहती थी स्मृति, और रिव्यू ले लिया गया है। 74 भारत का स्कोर एक विकेट पर, और सदरलैंड जो कि तेज गति की लंबी ऊंची कद की गेंदबाज हैं, स्टंप्स के बीचों बीच मिडल स्टंप पर यह गेंद थी जिसे स्मृति मंधाना ड्राइव करना चाहती थी बैकफुट पर जाकर, मगर गेंद पैड से टकराई थी और LBW की अपील की गई, अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं था जिसकी वजह से रिव्यू लिया गया। बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया था स्मृति ने, और गेंद उनकी जांग से टकराई है। जिस तरह से गेंद में गति और उछाल है, शायद ये हो सकता है कि उछाल ज़्यादा हो, और ये रिव्यू में देखा गया कि जो गेंद का टिप्पा है वो लेग स्टंप के बाहर पड़ा है, जिसकी वजह से रिव्यू पर गौर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मृति सुरक्षित अपनी क्रीज पर इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 31 पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी लेग स्टंप के थोड़ी बाहर, जिसे पुल

0: करने का प्रयास किया था, पैड से टकराई थी, जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, प्रभाव नहीं था अंपायर पर इस अपील का, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया था जिसे नकार दिया गया। सदरलैंड एक बार फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया पॉइंट क्षेत्र पर और डाइव करके इस गेंद को फील्ड किया गया, मगर फिर भी एक रन भागने का मौका स्मृति के पास। 75 भारत का स्कोर एक विकेट पर 10.2 ओवर के बाद 7.26 का औसत इस समय। रनों की रफ्तार को अब तेज करना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा लक्ष्य देना है। और जेमाइमा इसी मानसिकता से आई हुई लगती हैं, आते ही उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए हैं, आक्रमण करना शुरू कर दिया है और देखना है कि इस ओवर में सदरलैंड की तेज गति की गेंदबाजी के आगे किस तरह से आक्रमण करेंगी, ये देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। सदरलैंड की ये गेंद ऑफ स्टंप के लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने का प्रयास, मगर गेंद से काफी दूर, जिसकी वजह से वाइड बॉल का इशारा, एक रन भारत के खाते में। 76 भारत का स्कोर 10.2 ओवर के बाद। जेमाइमा काफी समझदार बल्लेबाज हैं, गेंद खेल के नब्स को वो समझती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी इनिंग्स को बनाती हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में ज्यादा सफल अब तक नहीं रही हैं वो। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फ्लिक किया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागने का मौका, एक रन जेमाइमा और भारत के खाते में। 77 हुआ भारत का स्कोर। जेमाइमा और ब्रीक्स T20 मुकाबलों में 130 मैचेस अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल चुकी हैं, 117 पारियां, 2790 रन, 118.92 के स्ट्राइक रेट से और अपने करियर में 16 अर्धशतक लगा चुकी हैं। ये बताता है कि कितना अनुभव है उनके पास। स्लो फेंकी हुई गेंद और चकमा खा गई स्मृति मंधाना, बीट हो गई, ड्राइव करना चाहती थी और ये एक और डॉट बॉल, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। सदरलैंड चतुराई से गेंदबाजी करती हैं, अपनी गेंदों में धीमी गति की गेंद भी फेंकती हैं जो परेशान करती है बल्लेबाज को, और इस बार परेशानी में दिखाई दी स्मृति मंधाना। अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति को। इस ओवर की पांचवी गेंद सदरलैंड की। इस बार ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र पर, गैप मिला स्मृति को, सीमा रेखा पार कर गई गेंद, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 7 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से, एक वाइड बॉल से, 2 सिंगल्स और एक शानदार स्मृति के चौके से। सीधे बल्ले से खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया था सदरलैंड की इस गेंद को, हालांकि इस गेंद को भी धीमी गति से फेंका गया था सदरलैंड की तरफ से, मगर इसे समझा, अच्छी तरह से पढ़ा और सीधे बल्ले से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ड्राइव किया। शानदार बल्लेबाजी। 36 पर स्मृति 34 गेंदों का सामना करने के बाद 81 भारत का स्कोर। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा, आक्रमण करना होगा ऑस्ट्रेलिया की सटीक अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी पर, जो कि काफी मुश्किल काम है। सदरलैंड की यह गेंद एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई मिडल स्टंप पर, जिसे स्क्वायर लेग क्षेत्र पर खेला स्मृति ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। 11 ओवर्स के बाद भारत 82 एक विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So the story continues for Indian women of picking up boundaries every over. They picked up one boundary in the last over as well. That takes score to 82 at the end of 11 overs. And with the kind of start that India has got in between, Wareham ready with the next over. Actually, ball was very wide on the off stump. Smriti Mandana was quite placed to play that stroke, but she checks her bowling, Wareham, and actually moves more onto the offside of the bowler and batsman, and no damage done. So 82 for 1, it is 11.1 over this time again, similar kind of

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 52 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: ആകാശവാണി സേ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത്ത് മേ സർ ഫിറോസി. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है. प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है. भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया. यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत. और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया. वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो. श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे. दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की.
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है.
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है. दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया. ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है. प्रधानमंत्री ने ये सम्मान

0: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल्स एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस

0: अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे।

0: Victoria says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: ആകാശവാണി. ICC വിമൻ T20 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് 2026 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയും ആസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
2: ഫേബിയൻ ലിച്ച്ഫീൽഡ് ദിസ് ടൈം ഫേസിംഗ് ഷെഫാലി picking up the length quite early, dances down the wicket and plays over the long on area for 6.
3: ये लगा आभा का छक्का.
2: That 6 would put pressure on Shefali. Very first ball of her went to 6 and that brings Australia to 43 for 1. Fabian, there's a chance of appeal, but no, I think there's a ball is rushing toward the boundary, so is Renuka. Cuts it off and the batsman and then the player has enough time to take 2. Litchfield, rather Beth Mooney was looking for third run, but Litchfield wasn't interested. So 45, 5.2 overs gone, 45 for 1, and Australians are getting into their rhythm. They need to pick up wickets and that's what is in the back of the mind. This time Litchfield quite early switches her side. She reverse sweeps it, actually changes from a left-hander to right-hander quite early before the ball been bowled by Shefali, and plays it over the circle for 2 more. So that 2 gives 10 already in this over and score moves on to 49 for Australia. So 47 for Australia for 1. 5.3 overs, 47 for 1. Litchfield, 21 of 19 deliveries. This time again looking for drive, but Shefali not giving enough width, and that resulted in a dot ball. So 4 balls, 10 runs of this Shefali's over. First over she just gives single, but now in this over she has already consisted 10. Maybe next over we can see the leading bowler of the World Cup, Shree Charni, coming in. This time again Litchfield was quite intentional that she wanted to go for drive every over. They want to maximize the power play, the runs they can score in the power play. They wanted to do that, but Shefali outsmarted her by checking her length and not giving any width. Another dot ball resulted. So 5.5 overs, 48 for 1, and it needs to be seen what is there in the store for the last ball. This time again drives it. There's a chance of run out, could be if there's a direct throw, but no, misses. Renuka at short fine leg looking for a dry ball, went to Renuka. She was quick, but so were much more quicker with Australians. So 6 overs gone, power play 49 for 1, chasing 171 Australia.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: 6 ओवर्स का खेल हो चुका है, टाइम आउट ड्रिंक्स का समय 49 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं, 171 रन का लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया को, 122 रन चाहिए 84 गेंदों में। खेल इस समय अश्विन पूरी तरह से संतुलित है अगर देखा जाए तो। रेणुका सिंह ने एक सफलता प्राप्त जरूर की है, मगर अपनी गेंदों में वो पहले ओवर में ज्यादा दिशा को काबू में नहीं रख पाए थे, अनुशासित नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से रन बनाने का मौका मिला। और क्रांति गौड़ जिनके पास गति है और हवा में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इस वजह से आक्रमण करने पर और स्ट्रोक लगाने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, जिसकी वजह से उनके एक ओवर में ही 12 रन बटोर लिए थे। और शेफाली वर्मा जिनका पहला ओवर काफी अच्छा रहा, 1 रन दिया था उन्होंने, मगर दूसरे ओवर में उनकी फ्लाइट को, उनकी वेरिएशंस को भांपते हुए अगले ओवर में फिर से प्रहार करने पर सफल रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। तो काफी संतुलित है खेल इस समय, भारत को विकेट्स चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए साझेदारी।

0: Precisely. But what India has managed to do with those two overs, when just single runs were scored, they were able to put breaks on Australians. Otherwise, they were scoring very freely. So look at 6 overs, 49. The required run rate is still around over 8 runs per over, which was earlier 8.71 required. So they need to be consistent. And we know in a game of T20 where there's not much of margin for errors, if Indians stick to the line and length, they should be able to build pressure. Because once you get a wicket, then I think there'll be more pressure in Australians, and that's what would be discussed in the huddle during the drinks break. There'll be some messages passed on by the team management to see what can be done. And Birinderji, mind you, we haven't used Sri Charni so far. She's been the most successful spinner in this World Cup, picking up 12 already in the matches, 4 matches she played. And she can be very lethal against Australians.
1: और यहाँ से खेल काफी दिलचस्प होने वाला है अश्विन, क्योंकि पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं. भारतीय गेंदबाजों के पास सुरक्षा के लिए फील्डर्स होंगे, बाउंड्री पर 4 फील्डर्स होंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा खुलकर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर सकेंगे. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के बारे में सोचेंगे, और इन परिस्थितियों में दीप्ति शर्मा और श्री चरनी किस तरह की गेंदबाजी करती हैं और किस तरह की अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी रहती है, ये काफी ज्यादा तय करेगा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर कि वो आक्रमण ना कर सकें, ज्यादा रन ना बटोर सकें और दबाव वापस उनके ऊपर आ सके.
0: And then we have Radha Yadav also with the spin attack to add to it. So India has quite a few bowling options. And here comes Sri Charni, Birinderji with her next over.
1: Sri Charni अपने ओवर की पहली गेंद फेंकती हुई फ्लाइटेड स्टंप्स के बीचों बीच कदमों का इस्तेमाल करके इसे ड्राइव किया था बल्लेबाज लिचफील्ड ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन भागने का मौका. 50 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर. श्री चरनी, जिस तरह की अश्विन ने बताया कि सबसे सफल गेंदबाज हैं भारत की इस वर्ल्ड कप में, 12 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं 5.31 की इकोनॉमी से. ओवर की अगली गेंद रिवर्स स्वीप का प्रयास, हवा में गेंद जिसे लपकना चाहती थी ऋचा घोष, मगर गेंद उनसे काफी दूर, लगता नहीं है कि बैट से लगी हो, पैड से टकराई थी ये गेंद, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं. अच्छी गेंदबाजी श्री चरनी द्वारा. इस गेंद में कम फ्लाइट की थी उन्होंने, जिसकी वजह से अपने रिवर्स स्वीप को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाई थी लिचफील्ड. ओवर द विकेट श्री चरनी की ये गेंद से उठा दिया कवर्स के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ से भागी क्रांति गौर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगी एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से 2 रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. 52 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर. इस ओवर की 3 गेंदों में आक्रमण करने का प्रयास किया है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्लाइट को अच्छे से भांपा जा रहा है, अच्छी क्रिकेट लॉर्ड्स के इस मैदान में. 52 पर 1 ऑस्ट्रेलिया 6.3 ओवर्स के बाद. ओवर द विकेट श्री चरनी की ये 4th गेंद स्टंप्स के बीचों बीच रिवर्स स्वीप का प्रयास, पैड से टकराई गेंद, LBW की अपील, मगर गेंद लेग स्टंप से बाहर है, ये देखते हुए अंपायर का निर्णय नॉट आउट. हरमनप्रीत ने हालांकि पूछा गेंदबाज से कि रिव्यू लिया जाए कि नहीं, श्री चरनी ने नाम में सिर हिलाया क्योंकि वो जानती हैं कि गेंद लेग स्टंप से बाहर थी. लेग बाय, 1 अतिरिक्त रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में. 53 ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट पर 6.4 ओवर्स के बाद. 171 रन का लक्ष्य, भारत का यह मुकाबला जीतना जरूरी अगर सेमीफाइनल में जाना है तो, और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही अपने पूल में सबसे पहले नंबर पर 8 अंकों के साथ. बेथ मुनी 18 पर सामना करेंगी श्री चटनी का. इस ओवर की 5वीं गेंद गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, ऑन ड्राइव मिड विकेट क्षेत्र पर, 1 रन फिर से भागने का मौका. 54 1 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के 50 रन में 50 रन की साझेदारी लिचफील्ड और मुनी में 39 गेंदों में. श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उठा दिया इसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, देखना है कहां तक जाती है. यह दूसरी सफलता भारत के लिए लिचफील्ड के रूप में. बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, ठीक से बल्ले पर नहीं आई गेंद, और स्मृति ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में. जोश आता हुआ भारत के खेमे में, उत्साह आता हुआ इस सफलता के साथ लिचफील्ड, जो कि काफी आक्रामक खेल रही थी, 24 पर 25 गेंदों का सामना करने के बाद कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकली थी और ऊंचा खेली. स्मृति ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में, और इस तरह से अश्विन ये भारत को दूसरी सफलता.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.

0: करनी और दीप्ति शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना है कि इस स्पेल में कितनी सफलताएं वो प्राप्त करते हैं। एक आध सफलता अगर और मिलती है तो ये निश्चित ही दबाव डालेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर श्री चरनी की, राउंड द विकेट जिसे सीधे बल्ले से ड्राइव किया पेरी ने, और लॉन्ग ऑन से जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। इस एक रन के साथ ऑस्ट्रेलिया 63 दो विकेट पर। मुनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 21 पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें दो शानदार चौके शामिल हैं। ये दो चौके पहले ओवर में ही उन्होंने लगाए थे क्रांति गॉड के विरुद्ध, मगर उसके बाद से सिंगल्स के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्री चरनी की ये गेंद फ्लाइटेड जिसे कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, शफाली है वहां पर, और एक रन फिर भी भागने का मौका मिलेगा। पहली दो गेंदों में दो रन श्री चरनी की, ये एक अच्छी बात है कि वो स्टंप्स के बीचों बीच गेंदबाजी करती हैं, बल्लेबाज को ज्यादा बाजू खोलने का मौका नहीं देती हैं, और गुड लेंथ पर उनका टिप्पा रहता है। अराउंड द विकेट ये गेंद, इस बार इस गेंद में फ्लाइट थी, ओवर पिच जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर पेरी ने, और गैप मिला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई, चार रन।
1: ये लगा आभा का
0: कवर्स क्षेत्र में और गैप भी मिला उन्हें और चार रन भी। 68 पर दो इस समय ऑस्ट्रेलिया 8.3 ओवर्स के बाद। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से पेरी के लिए, इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ गेंद पैड से टकराई LBW की अपील, मगर कोई प्रभाव नहीं इस अपील का अंपायर के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, इस बार गेंद घूमी नहीं टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई, और इसे ड्राइव करना चाहती थी पेरी मगर पैड से टकराई। भाग्यशाली रही कि निर्णय उनके पक्ष में रहा। 8.4 ओवर के बाद 68 ऑस्ट्रेलिया दो विकेट पर। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे स्टीयर किया शॉर्ट थर्डमैन क्षेत्र पर, दीप्ति है वहां पर चुस्त और मुस्तैद, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी चौका लगने के बाद श्री चरनी द्वारा अपनी गेंदों को गुड लेंथ पर डालती हुई और ऑफ स्टंप पर रखती हुई। राउंड द विकेट एक बार फिर से इस ओवर की आखिरी गेंद फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया ड्राइव किया गया मगर सीधा कवर्स क्षेत्र पर खड़े फील्डर के हाथ में। 9 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 68 दो विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So Shri Chani doing what she is known for best. She has just given 5 runs at an average of 2 overs, 2 overs, 10 runs and an important wicket of Phoebe Litchfield that she picked up in the last over. It's over number 9 which has gone by 68 for 2. Beth Mooney on 22 of 19 deliveries. Alice Perry with 2 boundaries. Glorious boundaries 11 of 8. This time in the air. Look, we need to see if there's anyone to catch it. And it does. This time Radha Yadav butterfinger heads it and she roars loudly with that wicket. So another wicket fell down in terms of Beth Mooney. 9.1 overs, 68 for 3. Beth Mooney gone, the danger lady who loves to score against India, and Deepthi Sharma, who's been the most successful bowler against Australia, picking a maximum wickets so far. Anyone from India, it's been Deepthi, and she manages to pick the wicket off Beth Mooney. So 68 for 3. This is 10th over in progress, mind you. And the run rate now climbing to 9.51 runs per over. That brings in more pressure to Australians. And Indians are completely bossing this game, Birinder ji.
0: और अश्विन, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि खेल का जो ये पड़ाव है ये काफ़ी दिलचस्प है, यही वो समय है जब भारत ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत के ये जो दो स्पिन गेंदबाज हैं श्री चरनी और दीप्ति शर्मा इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और उसी का ये परिणाम देखने को मिला कि फ्लाइटेड गेंद थी बेथ मुनी के लिए, फ्लाइट में बीट किया, इसे ड्राइव करना चाहती थी, गेंद से दूर रह गई और इसे लॉन्ग ऑन पर बड़े अच्छे तरीके से राधा ने इस कैच को पकड़ा, और इस तरह से ये सफलता मिली भारत को। और ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट बेथ मुनी, जो कि जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रही थी,

0: वापस आ चुकी है.
1: And this is Sharma, this time again a full length delivery. They are trying to make batsman, the batter reach to the ball, and with that wicket, Deepthi Sharma became the highest international wicket taker in the women history with 356 wickets she has taken already, and she is the one now she got with this wicket over Julan Goswami of India. 356 wickets she has taken, two dot balls, one wicket and one dot. This time again Deepthi Sharma, quick and delivery on the onside, they're looking for single, they should be pushing for two, but so quick was Harmanpreet there, and with that just resulted in a single. So new batter is Ashleigh Gardner, who's on strike. And Australia 70 for 3, 69 for 3 in 9.3 overs. This time Ellis Perry right on the top, she plays it, but there's someone with one bounce. Radha Yadav was looking for a catch. She knows that she could have taken that stride earlier, but then able to pick the ball on the first bounce, throws it quickly to the back to Deepthi Sharma, resulted in one. There's 70 for 3, 9.4 overs gone. There's another 101 runs required in 10.2 overs. This time Ellis Perry on the back foot drives it down. Deepthi Sharma dives it but couldn't cut off the single, and batsman and the batter has time to cross for one more single. So Deepthi Sharma has been economical this over. She's just given 3 runs and picked up a very, very important wicket of dangerously looking Beth Mooney. So Indians are striking when there was a little bit of partnership getting built, and they're striking at the right moment. This time again she follows the batsman. She was looking for off drive and moved to the onside, but Deepthi Sharma quick to understand that. So 10 overs gone, 73 for 3 Australia.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: दो ओवर्स 12 रन देकर एक सफलता, ये हैं दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी के आंकड़े. दो ओवर्स में 10 रन देकर एक सफलता, ये श्री चरणी की गेंदबाजी के आंकड़े हैं. ये दोनों स्पिन गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालने में पूरी तरह से सफल रहे हैं, और देखना है कि ये कहानी कितनी लंबी चलती है, किस तरह की गेंदबाजी से और ज्यादा कितना दबाव बना पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. 72 है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर. 10 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 60 गेंदों में 99 रन. और पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ड्राइव किया था पॉइंट क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन भागने का मौका. अच्छी गेंद राधा यादव की जिसमें फ्लाइट थी मगर शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप पर, और इसे हल्के हाथों से खेलकर एक रन पूरा कर लिया था पैरी ने. गार्डनर सामना करेंगी राधा यादव का. बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राधा यादव, जिनका प्रयास ये रहता है कि गुड लेंथ गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर की जाए. अराउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ, जिसे बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया मगर रन बनने की कोई संभावना नहीं. 91 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 106 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं राधा यादव. फ्लाइटेड गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था गार्डनर ने, सीधे बल्ले से ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर. स्मृति है वहां पर जिन्होंने फील्ड करके वापस थ्रो किया. 74 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर के बाद. 57 गेंदों में 97 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को. रन रेट थोड़ा बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ इस समय, जिस तरह का दबाव. बीचों बीच फ्लाइटेड, जिसे कवर्स क्षेत्र पर खेला था पेरी ने, रन बनने की संभावना नहीं. ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिल रहा है इस ओवर में. 2 रन आए हैं अभी 4 गेंदों में. अराउंड द विकेट राधा यादव की ये गेंद थोड़ी तेज फेंकी हुई, जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन.
3: ये लगा आभा का चौका.
0: इस गेंद को थोड़ा तेज फेंका था राधा यादव ने मगर दिशा को और लंबाई को सही नहीं रख पाई. ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच, और ये दोनों कारण काफी थे पेरी के लिए एक मजबूत कवर ड्राइव खेलने के लिए और गैप में खेलने के लिए, जिसकी वजह से 4 रन मिले. राधा यादव की ये गेंद इस बार फ्लाइटेड ऑफ स्टंप पर, जिसे फिर से ड्राइव किया गया डीप कवर्स पर है फील्डर. जब तक गेंद को फील्ड करेंगे एक रन भागने का मौका. 11 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 79

0: रन बनने की संभावना नहीं। 10 गेंदों में 15 रन बना चुकी हैं गार्डनर। 95 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12.3 ओवर के बाद। 30,000 क्षमता है लॉर्ड्स स्टेडियम की। 27,000 दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आज पहुंचे हैं, जो कि रिकॉर्ड है ग्रुप स्टेज मैचेस में दर्शकों के आने का। इस बीच राधा यादव की ये फुल टॉस गेंद, जिसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर गार्डनर ने, और एक रन भागने का मौका। 96 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर के बाद। राधा यादव की यह तेज फेंकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे कट किया पेरी ने, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 12.5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के 100 रन पूरे 3 विकेट के नुकसान पर। 47 गेंदों में अब 71 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। इस ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, और उसका कारण यह है कि राधा यादव ने कुछ कमजोर गेंदें फेंकी हैं, और हरमनप्रीत भी इससे नाखुश कि जिस तरह की गेंदबाजी राधा यादव कर रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र पर, और जब तक श्रीचरणी गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, पेरी के पास मौका 2 रन भागने का। 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया 102 3 विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: A much needed over for Australians when the required run rate was inching towards 11 runs per over. That over, Radha Yadav consisted 17 runs, 2 boundaries and a 6, which brings down to another 9.5 runs per over. This time Deepthi Sharma coming in with her 3rd over, and see what she can do. She's brought in to take the wicket here. Perry looking dangerous, so is Gardner. 13.1 overs gone, 103 for 3. Still 87 runs required of 49 deliveries. There's tension simmering all around. This is actually playing to a great game of one day display by both teams, not giving anything to each other. India so far has been dominating in those last 4-5 overs and in the power play, but then Australians are doing the Australian thing. They are clawing back to the game with 17 runs in that over. Deepthi Sharma again close to the umpire, makes it full toss, dances down the wicket. There's someone in the deep, cuts it down, Jemima Rodrigues, but enough time for both the players to take two. So with that two, now 39 deliveries to go, 65 runs required. 39 balls, 65 runs, 106 for 3. India needed a wicket at this stage. 38 runs of partnership between these two, Ellis Perry and Ashleigh Gardner. Ashleigh Gardner has been very clinical. 19 runs of 30 balls. Now she has taken her total 20 runs of 14 deliveries. 107 for 3. 13.4 overs. This match is going down to the wire. 64 required. 38 deliveries to go. 14th over in progress. 171 is the target. And currently Australia are sitting at 107 for 3. India, though, managed to pick wicket, but this partnership is looking dangerous in there. Let us see what Jemima Rodrigues, batsman, or the batter, has time to take 2 more runs here. Very nice fielding there in the deep. Deepthi Sharma so far in 5 deliveries has conceded 7 runs. So I would say at par bowling with the required run rate, 9 runs they require, she's conceded 7. One more dot would again take the run rate to 10 runs and per over. 13.5 overs, 119. This is a very bad delivery, but equally bad shot. She's not happy with the shot that she played. She knows she missed in boundary opportunities. So 14 overs gone, 109 for 3, 36 legal deliveries and 62 runs required. Birinderji, this match is actually going great for both teams.
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: ड्रिंक्स का समय हो चुका है।

0: ओवर का खेल बाकी है और 109 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं और 36 गेंदों में 62 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। खेल अभी भी संतुलित है क्योंकि अच्छे ओवर अभी भारत की तरफ से आने बाकी हैं। श्री चरनी के कुछ ओवर बाकी हैं और तेज गति की गेंदबाजी आनी बाकी है। और दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की तरफ देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज इस समय आत्मविश्वास में हैं। एलिस पेरी जो कि 32 पर इस समय 23 गेंदों का सामना करने के बाद बल्लेबाजी कर रही हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं, पूरी तरह से आत्मविश्वास में हैं और जब भी जरूरत पड़ती है आक्रमण की वो कर रही हैं। और गार्डनर जो कि मची हुई अनुभवी बल्लेबाज हैं, पूरी तरह से सक्षम है आक्रमण करने में। तो ये खेल किसी भी तरफ जा सकता है। 14 गेंदों में 20 रन गार्डनर ने बनाए हैं और पूरी तरह से सक्षम है वो भारतीय गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण करने में। तो देखना यह है कि क्या भारतीय गेंदबाजी कुछ सफलताएं प्राप्त करके, कुछ विकेट हासिल करके दबाव बनाती हैं ऑस्ट्रेलिया पर, या फिर ये दोनों बल्लेबाज अश्विन इसी तरह से रन बटोरते रहेंगी और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब लेकर जाती रहेंगी।
1: एंड इंडियन सेमीफाइनल होप्स आर हैंगिंग बाय अ थिन थ्रेड ऑफ 36 बॉल्स एंड दोस 62 ऑड रन्स दैट Australians require on those 36 balls, so a very thin margin. And what India need, they have been very clinical so far. They need to pick up wickets on a regular interval, and that chokes up the runs. You know, new person comes in, takes time to settle and score, and that's what would be important and would be discussed in this drinks break and the huddle between the management and umpire and all the players to regroup themselves, slow down the game a little bit, because those two overs have costed India some runs. Otherwise, 11 runs per over was going to area where it was match was tilting toward India, but Australia are now again clawing back onto the game. 109 for 3 of 14, 36 more balls to go, and they just need 62, and that makes hearts pumping for everyone all around in our commentators box, the fans all around the globe thinking what's going to happen in those 36 deliveries.
0: और इन 6 ओवर्स में अश्विन ये बात पक्की है कि इस दबाव की स्थिति में आपको अनुशासित और स्टीक गेंदबाजी करनी होगी। आपने देखा कि अगर आप कुछ भी कमज़ोर गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाज आपको बख्शेंगे नहीं, जिस तरह से राधा यादव ने एक ओवर में कुछ कमज़ोर गेंदें फेंकी और उस पर रन बनाने के मौके मिले। श्री चरनी अपने ओवर की शुरुआत करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया गार्डनर ने, और हालांकि ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी ये गेंद, मगर उनसे दूर, जिसकी वजह से रन बनाने का मौका। 110 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। श्री चरनी जो कि सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से, आज भी सफलताएं प्राप्त कर चुकी हैं अपने ओवर की शुरुआत करती हैं। फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद जिसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने, लॉन्ग ऑन पर जब तक स्मृति गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। श्री चरनी का ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर किसी बल्लेबाज को आउट करने में वो सफल हो पाती हैं तो दबाव बनेगा ऑस्ट्रेलिया पर। अराउंड द विकेट श्री चरनी की ये गेंद, इसे उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से गार्डनर ने, स्लॉग स्वीप किया, गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 6 रन।
2: ये लगा आभा का छक्का।
0: श्री चरनी ने फ्लाइट की थी मिडल स्टंप पर, जिसे स्लॉग स्वीप किया गार्डनर ने और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए शानदार फॉलो थ्रू और सीमा रेखा से काफी दूर गिरी गेंद, जो ये बताती है कि स्ट्रोक अच्छी तरह से कनेक्ट हुआ था। दबाव भारतीय गेंदबाजों के ऊपर, जिस तरह से स्ट्रोक लग रहे हैं, रन बन रहे हैं। 117 ऑस्ट्रेलिया, 33 गेंदों में 54 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। 117 पर 3, 14.3 ओवर हो चुके हैं। श्री चरनी जो कि भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, एक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, अपना तीसरा ओवर फेंक रही हैं। अराउंड द विकेट फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ, गार्डनर 27 पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया, काफी देर हवा में रही गेंद, राधा यादव है वहां पर, मगर उनसे दूर गेंद फील्ड किया गया और एक रन भागने का मौका। 50 रन की साझेदारी पेरी और गार्डनर के बीच 33 गेंदों में 19 मिनट्स में, दबाव की स्थिति में बल्लेबाजी कर रही थी और पूरी तरह से निकलने का प्रयास कर रही हैं इस दबाव से। एक बार फिर से तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे स्टीयर कर दिया गया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: पेरी के बल्ले

0: इंडिया टू विन दिस मैच।
1: ये ओवर भारत के लिहाज से काफी बुरा रहा, भारत के लिए जिस तरह से स्ट्रोक्स लगे, रन बने और रनों की औसत नीचे आई। चार ओवर्स में अब 34 रन चाहिए, 8 से कुछ ज्यादा की औसत दरकार ऑस्ट्रेलिया को। और जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की जा रही है गार्डनर और पेरी द्वारा, उनके लिए ये लक्ष्य कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। भारत को जरूरत है विकेट की, क्योंकि जब तक ये साझेदारी टूटेगी नहीं, भारत वापस दबाव नहीं बना सकेगा, इस मैच में वापसी नहीं कर सकेगा। ये मुकाबला, ये मैच जो भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है, और इस समय ऑस्ट्रेलिया अपने पक्ष में इस मैच को ले जाता हुआ जिस तरह की बल्लेबाजी अब हो रही है। चार ओवर में 34 रन चाहिए और देखना है कि कप्तान हरमनप्रीत गेंदबाजी के लिए किसे बुलाती हैं। अब तक रेणुका सिंह, क्रांति गौड, शेफाली वर्मा, श्री चरनी, दीप्ति शर्मा और राधा यादव, इन गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका है। रेणुका सिंह, श्री चरनी और दीप्ति शर्मा ये सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से। रेणुका सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ये पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने, जो कि 45 पर बल्लेबाजी कर रही हैं। और जब तक स्मृति लॉन्ग ऑन से फील्ड करके बॉल को थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। 138 तीन विकेट पर इस समय ऑस्ट्रेलिया। शॉर्ट थर्डमैन पॉइंट कवर मिड ऑफ, ये ऑफ साइड पर फील्डिंग है। रेणुका सिंह की ये गेंद गुड लेंथ, जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला, फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया गया। रन बनने की कोई संभावना नहीं। 138 पर 3, 16.2 ओवर के बाद 22 गेंदें, 33 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। भारत इस समय विकेट की तलाश करता हुआ जो मिल नहीं पा रही है। रेणुका सिंह भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, जिन्होंने पारी की दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त की थी। इस बार उठा दिया गार्डनर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद हवा में सीमा रेखा पार करती हुई 6 रन।
2: ये लगा आभा का छक्का।
1: गार्डनर पूरी तरह से आत्मविश्वास में, 41 पर बल्लेबाजी कर रही हैं, 23 गेंदों का सामना करते हुए। ये गेंद गुड लेंथ, जिसे कदमों का इस्तेमाल करके बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इसे ऊंचा और बड़ा शॉट खेला था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और गेंद हवाई रूट लेती हुई सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। रनों की रफ्तार तेज होती हुई 16.3 ओवर में 144 ऑस्ट्रेलिया, 21 गेंदों में 27 रन दरकार ऑस्ट्रेलिया को, लक्ष्य के करीब जाती हुई ऑस्ट्रेलिया। ओवर द विकेट रेणुका सिंह एक बार फिर से, गार्डनर के लिए गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया। स्मृति मंधाना है वहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से जम चुके हैं, जिम्मेदारी से और सूझबूझ से खेलते हुए। 45 पर पेरी, 42 पर गार्डनर, 145 ऑस्ट्रेलिया तीन विकेट पर 16.4 ओवर के बाद। इस ओवर की दो गेंदें बाकी। रेणुका सिंह ओवर द विकेट गुड लेंथ गेंद, इसे स्लॉग स्वीप किया मिड विकेट क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: दर्शनीय स्ट्रोक पैरी का, जो कि 49 पर पहुंच चुकी हैं इस चौके के बाद। गुड लेंथ गेंद थी मिडल स्टंप पर, जिसे ऊंचा खेले मिड विकेट क्षेत्र पर जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए। मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 149 तीन विकेट पर ऑस्ट्रेलिया। रेणुका सिंह ओवर द विकेट पैरी के लिए, 31 गेंदों में 49 रन की पारी पैरी द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद रेणुका सिंह ओवर द विकेट, ये गेंद काफी बाहर धीमी गति से फेंकी हुई, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। एक और रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में, और ये इतनी बाहर थी गेंद कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल की जगह नो बॉल का निर्णय दिया है। फ्री हिट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पेरी के लिए, जो कि इस समय 49 पर बल्लेबाजी कर रही हैं। और इस एक नो बॉल द्वारा ऑस्ट्रेलिया के 150 रन पूरे, 19 गेंदों में 22 रन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। रेणुका सिंह इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकेगी पेरी के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया बॉलर के सर के ऊपर से, पेरी ने यह शानदार चौका लगाया।
2: ये लगा आभा का चौका।

0: मुकाबले को जीतने के लिए। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा। आज का मुकाबला जीतकर ग्रुप स्टेज में वो पहले नंबर पर रहेगा और अपने सभी मुकाबले जीतेगा, जिस तरह से ये जीत निश्चित दिखाई दे रही है। श्री चरनी इस वर्ल्ड कप में 13 सफलताएं 13 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं, अपने इस स्पेल का आखिरी ओवर डालती हुई। आज भी एक सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी, 167 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। गार्डनर सामना करेंगे श्री चरनी का। फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक रन फिर से भागने का मौका, 100 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 100 रन की साझेदारी में 45 पैरी के हैं गार्डनर के, 57 गेंदें ली हैं उन्होंने इस 100 रन की साझेदारी को बनाने के लिए। 168 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर, 10 गेंदों में 3 रन चाहिए। पैरी सामना करेंगी श्री चरनी का। ओवर द विकेट श्री चरनी की ये गेंद, फ्लाइटेड ऑफ स्टंपर जिसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र पर, दीप्ति शर्मा है वहां पर, रन बनने की कोई संभावना नहीं। ये मुकाबला अब से 5 ओवर पहले जो संतुलित नजर आ रहा था, उसने अगर अंतर डाला है इस मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया है, तो इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से जिन्होंने समझदारी से और सटीक बल्लेबाजी की है। इस बार उठा दिया गेंद हवा में, शफाली हैं गेंद के नीचे और इसे कैच कर लिया गया और पैरी 56 रन की पारी खेलकर वापस लौट रही हैं। ये चौथी सफलता भारत को, मगर काफी देर हो चुकी है। जिस तरह से रन दरकार हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये ज्यादा मायने नहीं रखेगी ये सफलता दबाव बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल जीत की राह पर ऑस्ट्रेलिया इस समय, और ये भारतीय खेमा जानता है, जिसकी वजह से इस विकेट को प्राप्त करने के बाद भी कुछ ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैच उनके हाथ से फिसल चुका है। ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में उनसे बाजी मार चुका है। 8 गेंदों में अश्विन मात्र 3 रन चाहिए, और देखा जाए तो इस आखिरी सत्र में, खेल के इस आखिरी पड़ाव में दूसरी ड्रिंक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया हावी रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने आउटप्ले किया है भारत को।
1: Actually, there's a lot of despair that these two players have brought into Indian dressing room. They have played nicely with 100 in partnership. At one stage, it was looking like 11 runs per over they required, but Australians are, with their never-say-die attitude, they have been able to cross that boundary comfortably. So that wicket for Sri Charni here, that's her wicket number 14 in the World Cup, but that's where she will end her the World Cup campaign, because India most likely are crushing out of this World Cup.
0: Where हम आए हैं बल्लेबाजी के लिए, श्री चरनी की ये पहली गेंद उनके लिए गुड लेंथ, जिसे सीधे बल्ले से खेला गया, रन बनने की संभावना नहीं। 7 गेंदों में 3 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सटीक प्रभावशाली गेंदबाजी की, जिसकी वजह से भारत को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, और उसके बाद बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकल के ये ड्राइव किया वेरहम ने, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए।

0: ये लगा आभा का चौका।
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: तो आपको ये जानकारी दे दें कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप में भारत का सफर आज समाप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया से भारत आज पराजित हो चुका है। पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 170 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें स्मृति

0: ने 38 रन की पारी खेली, शफाली वर्मा 34 रन बनाकर आउट हो गई थी, जमीमा ने 34 रन बनाए थे और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 रन की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का लक्ष्य दिया और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर्स में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें शानदार अर्धशतक शामिल हैं पेरी के और गार्डनर के। तो आपको ये बताते हुए कि भारत का आज का ये लीग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ समाप्त हो चुका है, भारत पराजित हो चुका है और वर्ल्ड कप में भारत का सफर बस यहीं तक रहेगा। ये बताते हुए आपको अब ये बता दें कि हमारा विशेष कार्यक्रम आप जरूर सुने, जिसमें फोन करके आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। सुनिए इस कार्यक्रम को और अपने विचार साझा कीजिए। नमस्कार।
1: प्लेयर ऑफ द मैच

0: way this partnership was shaping up, it looked like India didn't have much of a chance.
1: Definitely, on such partnerships while chasing is commendable, I would say. And definitely, they could have scored a little more. And having said that, the strike rate could have been better of like Jemima and Shefali, and as well as Smriti Mandhana. And but definitely, I would say that today Australia outplayed them.
2: 100 मित्रों 9.1 ओवर में 68/3 थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। क्या वहां से भारतीय कप्तान उन पर दबाव बनाने का जो ट्रिक है वो मिस कर गई?
3: नहीं, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। टू बिग प्लेयर्स कंस्ट्रक्टिंग एन इनिंग्स मोर देन 100 रन्स। एक टाइम तो हम जोक कर रहे थे शायद इंडिया आराम से जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज वेयर द हॉलमार्क ऑफ अ प्लेयर हु हैज प्लेड 178 T20 internationals, partnering with another one, just the 103 T20, इनका एक्सपीरियंस आज हमको देखने को मिला। गुड क्रिकेट क्या होता है? गुड क्रिकेट इज कंस्ट्रक्शन रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, वेदर इट इज T20, वेदर इज ODI और टेस्ट क्रिकेट। पार्टनरशिप हर एक फॉर्मेट में होती है और वही आज हमको देखने को मिला। ये नहीं कि हमारा बोलर्स ट्राई नहीं किया, शायद मुझे लगा कि विकेट और बेटर हो गया था सेकेंड हाफ में, जिस तरह से वो बॉल मिडल कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है दे वर फाइंडिंग द गैप्स, और जहाँ पे जैसे जिस तरह से वो स्ट्रोक्स ले रहा था अलोंग द ग्राउंड सिक्सेस, फैंटास्टिक। इट इज़ अ क्लासिकल चेस एंड इट हैज़ बीन प्रूवन बाय टू वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड T20 ऑलराउंडर्स।
0: एब्सोल्युटली, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बट रविंदर, शुरुआती झटका भारत ने दिया ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड के विकेट के फॉर्म में, लेकिन अगेन 10 ओवर के मार्क के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कंसोलिडेट करना शुरू किया, तब भारतीय गेंदबाज दे वर लुकिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज।
4: देखिए, यही ग्रेट टीमों की पहचान यही होती है, तो विकेट दो तीन निकल गए लेकिन उन्होंने कहीं पर रन रेट को बढ़ने नहीं दिया। 10 रन की रन रेट लगभग आ चुकी थी लेकिन वो उसको मेंटेन करते हुए इतना मेंटेन किया कि आखिरी एक ओवर स्पेयर करके खत्म हो गए। 38 बॉलों में 56 पैरी ने बनाए और 29 बॉलों में 53 रन, मतलब ये तब आया तब 3 विकेट आउट हो चुके होते, 10 ओवर में लगभग 70 रन के करीब थे, 9 ओवर में इन्होंने 100 रन बना दिए। ये यही एक अच्छी टीम की पहचान होती है। यहाँ पे इंडिया चूक कर गई। मैंने आपको पहले बताया कि जेमिमा जब बैटिंग कर रही थी वहां पे ये स्ट्राइक रेट, वो ये नहीं कह रहा कि 180 रन बनते रहे जीत जाते हम, लेकिन वहां स्ट्राइक रेट और बेटर हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट है इंडिया का, मैं आपको बताऊं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर कहीं नहीं रहे। विकेट एक लिया रेणुका ने लेकिन आप देखिए कोई दो ओवर एक वेक ओवर, चार चार स्पिनर्स हैं, किसी का कोई भी आसपास चरनी के अलावा कोई इंप्रेस नहीं कर पाया। इसमें अगर आप 180 रन भी बना पाते तो उसमें 180-85 में भी लग नहीं रहा जिस हिसाब से ये मैच जीत सकते थे। तो बॉलिंग में इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टोटली आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया, क्योंकि आज
2: ख्याति अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं जो रविंदर चर्चा कर रहे हैं, क्रांति गौड़ को आपने खिलाया नंदिनी शर्मा की जगह पर इस प्लेइंग 11 में, सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की 12 रन दिए। जब स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा मार पड़ने लगी, 14वें ओवर में श्री चरणी के ओवर में 16 रन गए और उसके बाद धावा बोल दिया एक तरीके से गार्डनर और पेरी ने, क्या वहां पर क्रांति गौड़ को एक ओवर के लिए लाया जा सकता था?
1: डेफिनेटली लाना चाहिए पेसर को, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर नंदिनी का आप देखेंगे उसके पास काफ़ी वेरिएशन है, स्लोअर वंस हैं, उसके पास बाउंसर्स भी हैं, बहुत अच्छे उसके पास वेरिएशन हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो डालती है राइट एरियाज़ में। आई थिंक नंदिनी को ही आज खेलना चाहिए था आज का मैच, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं, हंगर है। एंड क्रांति गौड़ को पहले अगर बिठाया है तो आपको डेफिनेटली इतने क्रूशियल मैच में नंदिनी को बाहर नहीं बिठाना चाहिए था और क्रांति को ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा मैच नहीं देना चाहिए था।
0: और इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं। हम अपने श्रोताओं को दोबारा से याद दिलाना चाहेंगे कि वो अगर हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो वो हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 0112342108385। और अभी जो श्रोता जुड़े उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार मैडम
0: जी, अपना परिचय दीजिए।
5: हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने रविंद्र साहब से मैं बात करने का था। सर नमस्ते। सर
4: नमस्ते। नमस्ते
5: सर, पहला बैटिंग लेने से बहुत बड़ा गलती की है ना सर इन्होंने। ये लोग कौन ये लोगों को ऐसा सलाह देते सर? सेकंड बैटिंग लिए तो 99% इंडिया जीत ही गया। बहुत बड़ा गलती।
4: देखिए ये 170 रन बना, 170 रन टारगेट अच्छा था, लेकिन आप पहले बैटिंग करते बाद में बैटिंग करते, प्रेशर की गेम थी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी फाइनल सेमीफाइनल से पहुंचा हुआ है। इंडिया ने सोचा कि हम पहले बैटिंग करके हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं, हरमनप्रीत ने एक अच्छी एफर्ट भी करी बाद में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप पहले जिस तरह के बॉलिंग अटैक है, आपने देखिए एक क्रांति गौड़ एक ओवर किया, श्रेणुका ने चार ओवर किए, आप

0: करते हैं हम लोग। इसका उदाहरण राधा यादव के बारे में देखने को मिलता है।
1: जी
2: राधा यादव को टीम में शामिल करने पर ये सवाल कर रहे हैं, दो ओवर में आज 24 रन दिए हैं, लेकिन कप्तान ये चाहती थी कि शायद लोअर मिडिल ऑर्डर में वो कुछ आकर बड़े शॉट्स खेल सकें, शायद इसलिए उनको टीम में रखा गया।
3: द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट इज हाइंडसाइट, चर्चा, और हम माहिर है, इंडियंस आर वेरी गुड एट चर्चा। चर्चा करके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चर्चा करके अगर हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है तो मे बी दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। राधा यादव कर सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। हरमनप्रीत आज बैटिंग करके 50 रन किया, फोर्थ और फिफ्थ 50 अगेंस्ट T20 एंड शी ऑलवेज फिनिशेज ऑन द रॉन्ग साइड। बट अनफॉर्चुनेट है, दिस अनफॉर्चुनेट। हमने सोचा कि शायद आज चेंज हो जाएगा, हमने जब 170 रन बनाया हमने सोचा चेंज हो गया, बट दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ बिग टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, छः टाइम का चैंपियन तो ऐसा नहीं हुआ है, राइट? और देखिए, दे एंजॉय देयर क्रिकेट एंड हाउ इजीली दे पेस देयर इनिंग्स। हमारा जो इनिंग्स है, हम पेस करना अभी तक नहीं सीखे हैं। आप पांच मैच हमने जो देखा है, वी हैव नेवर लुक लाइक अ फ्लूइड एंड सॉलिड एंड स्मूथ सेलिंग टीम। समवेयर और द अदर वी वर फॉल्टरिंग, राइट? एंड द टू बिग मैचेस वी फॉल्टर्ड। आई टू सेज दैट हाइंडसाइट इज गुड, बट द फ्यूचर एज Kathy said, you have to ponder over it. You mentioned about Renuka Singh. What is her future? The question marks are there. Those question marks have to be addressed very quickly.
1: और राधा यादव का हमने जिक्र किया, पिछले मुकाबले में इस विश्व कप का जो पहला अपना मैच खेला, 3 विकेट उन्होंने चटकाए। हालांकि भारतीय टीम के पास प्रिपरेशन के लिए काफी वक्त था, घर पर 5 मैच की T20I सीरीज खेली रविंदर, उसके बाद साउथ अफ्रीका गई, वहां पे 5 मैच की T20I सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 मैचेस के उन्होंने सीरीज खेली, और उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में प्रिपेयर करने का मौका मिला। एक्सपेरिमेंटेशन जो था वो वहां तो चला ही, मेन टूर्नामेंट में भी देखने को लगातार मिला।
4: देखिए, आपके सारे प्लेयर्स खिला रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, हर मैच में 2 चेंजेस, 1 चेंजेस, कहीं मोमेंट कहीं आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। आपकी बॉलिंग में आपको बहुत ध्यान देना है, सबसे थोड़ी फास्ट बॉलर आपके पास 1 ओवर 2 ओवर के लिए बॉल कर रहे हैं, स्पिनर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एक चर्दी को छोड़कर, और बीच में आपकी जो फिट, और सबसे बड़ी चीज़ है फिटनेस है। आप ये फिटनेस देखिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की फिटनेस है और इंडियन प्लेयर की फिटनेस है। फील्डिंग में देखिए आप, उन्होंने कम से कम 15 से 20 रन बचाए होंगे इंडिया के, कम से कम 15 से 20 रन। एक अच्छा ओवर, एक लास्ट का अच्छा ओवर हरमनप्रीत के कारण आपको 170 दिख गया, नहीं तो ये 150 था, और आप वन साइड हार रहे थे मैच को। ये तो आप एक जीत जाते तो आपकी सारी चीजें, आप जो आज डिस्कशन कर रहे हैं कोई भी नहीं करता, सब बोलते बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इंडियन टीम को देखिए, आपने हराया किसको है, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, ऐसी टीमों को, जहां पर 2 अच्छी टीमें हैं वहां पर आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आप वो देखिए। पिछले मैचों में बैठे बॉलिंग का आपका क्या लेवल था आज, और फील्डिंग का क्या लेवल था, इसमें आपको अगर कंपीट करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही तरह के सिस्टम बना के आप पूरे मैच नहीं खेल सकते।
3: मेरा और एक आई वांटेड टू ऐड समथिंग आनंद, कि जेमाइमा को अगर रिटायर्ड आउट करना ही था, इतना देर में क्यों किया? मे बी वन मोर ओवर कुड हैव गिवन अस अनदर 20 रन्स। ये दीज आर क्वेश्चंस मैनेजमेंट में, जैसे एक श्रोता ने सवाल पूछा है कि मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है। रिटायर्ड आउट का डिसीजन तो ऑन फील्ड नहीं लिया जाता, वो मैनेजमेंट लेते हैं। एक ओवर पहले ले लेते हैं, शायद हमको और भी टोटल में 15 रन का इजाफा होता है। तो दीज आर मिस्टेक्स, दीज आर क्वेश्चन मार्क्स,
4: ये ब्लंडर्स हैं। आखिरी ओवर में आप ऋचा घोष को भेज रहे हो 2 बॉलिंग खेलने के लिए, आपका पहली बॉल से उम्मीद करोगे को छक्के मारेगी? जो लड़की 35 बॉल सेट होकर खेल रही है उसको आपने बाहर बुला लिया, उसके पास ज्यादा चांस था, वो सेट था, विकेट का पेस देख चुकी थी, उसके पास ज्यादा चांसेस था।
2: सेमीफाइनल मुकाबलों पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले ख्याति एक छोटा सा सवाल, हरमनप्रीत कौर का फ्यूचर T20 में आप कैसे देखती हैं?
5: देखिए, ये क्वेश्चन आप मुझसे तो पूछ सकते हो। आई थिंक एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हरमन से जब किसी ने पूछा था, उसने ये पूछा था कि क्यों आप चाहते हो कि मैं खेलना छोड़ दूँ, तो मैं भी यही आपसे पूछूंगी कि क्या वो खेलना छोड़ दें।
1: Well, we talked about experience that Harman brings, but then Shri Charini, who made her debut just last year, she has finished this edition of the World Cup with 14 wickets, becoming the highest wicket taker in any single edition for India, and as of now also the highest wicket taker in this edition of the World Cup. So Mitro, your concluding thoughts on the player?
3: Excellent. She's definitely a great potential, but the potential counts for nothing when the results don't show. That is the ultimate truth of sport.

0: कभी बढ़िया खेली कभी खराब खेली। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट पहले सेमीफाइनल में?
1: बिल्कुल, मुझे फेवरेट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं, टूर्नामेंट के लग रही है। जो जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन है, जो उनका आपस में जो फील्डिंग, जो उनका जो उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो देखने वाकई लाजवाब है। ऐसा लगता नहीं है कि लड़कियां खेल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी अच्छी फील्डिंग, चेस करते हुए ड्राइव करते हुए आ रही है, वापस भागते हुए आ रही है। मैंने तो इंडियन टीम को देखा ही नहीं कभी इस तरह की फील्डिंग करते हुए। ये जो लेवल दिखा रही है ये वाकई एक चैंपियंस लेवल है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के लिए चैंपियंस फेवरेट।
2: And this is the first time in Australia are not the defending champions in T20 or ODI World Cups, and that's why they're extremely hungry. West Indies, on the other hand, are coming off a loss to Ireland, Khyati.
3: Yeah, I mean, that's also news. I mean, that's a big news, definitely. I mean, we are not ready for two big news, and that too sad news. Yeah.
0: दूसरा सेमीफाइनल जहां पर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। दक्षिण अफ्रीका भी आज बहुत मुश्किल से बांग्लादेश से पार पाए हैं, उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा। भारत के साथ भी जीते, वो जीवनदान मैरिजन कैप को अगर नहीं मिला होता तो शायद वो उस मैच की स्थिति अलग होती। इंग्लैंड वहां पर एज पर नजर आ रही
4: 100% they will start as the defensive team, South Africa will be the underdogs. And they love to be the underdogs. इस तरह का जो टीम जो लड़खड़ाता है वो सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं। They like to be the underdogs, but they have match winners. Don't forget their captain, Marizon Capps, Tasman Brits, fantastic. They're all capable cricketers. And in 2020, in T20 format, 20 overs, they can be a very very solid force. And you just need 4 or 5 people to perform, not the entire team. और उनका फील्डिंग भी ठीक ठाक है। और देखिए इंग्लैंड विल ऑब्वियसली स्टार्ट एट फेवरेट्स, अनबीटन रन, सुपर्ब रन, बट दैट विल बी अ क्रैकर फॉर मैच। आई वुड से साउथ अफ्रीका हैव अ चांस टू गो टू द फाइनल।
2: Khyati there alluding to India's one run loss to Ireland, which means that for the first time ever they've lost a series to Ireland, and that coming by a margin of 2-0 in men's cricket. Coming back to women's cricket, aur wapas se England aur South Africa ke us semi-finals के लिए बिल्डअप करते हुए यहाँ पर हम रविंदर, इंग्लैंड की तरफ से हमने देखा है कि हालांकि उनकी कप्तान को इंजरी हुई, लेकिन जिस तरह से चार्ली डीन उनके एब्सेंस में लगातार फिट इन होती आई हैं सिवा ब्रेंट के नहीं होने पर।
1: बिल्कुल, इंग्लैंड का इंग्लैंड बिल्कुल एक ऐसी टीम लग रही है जो कि सिर्फ जो इस समय ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिजर्विंग जो फाइनल दिख रहा है मुझे, क्योंकि वही ऐसा लगता है जो चैलेंज कुछ रख सकती हैं, क्योंकि जो ये लोग, अब सबसे बड़ी बात है आपको अगर ऊपर आना है आपको सबसे पहले अपनी फिटनेस, अपने फील्डिंग पर जोर देना पड़ेगा। बैटिंग बॉलिंग तो बात की बात सब करेंगे, लेकिन जब तक आप अपनी फील्डिंग का लेवल नहीं सेट करेंगे, आपकी फिटनेस का लेवल सेट नहीं करेंगे, तब तक आपको इतने ऊपर की टीमों से आप कंपीट नहीं कर सकते। देखिए आप शेफाली को लेकर आप सोच, शेफाली बॉलर नहीं है, आप बैटर था चाहिए, लेकिन आप उसको पार्ट टाइम बॉलर को फुल टाइम बनाना शुरू करोगे, बांग्लादेश पाकिस्तान के अगेंस्ट चल जाएगा, अच्छी टीमों के अगेंस्ट आप नहीं चलेगा। देखिए 9 ओवर में 100 रन बना के मैच खत्म कर दिया 3 विकेट निकालने के बाद। तो यहां पे आपको जो मैनेजमेंट है और जो एक ओवर पहले एक सेट बैट्समैन को बाहर बुला रहे हैं, इस पे बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है मुझे कि ये क्या इनकी विजडम है, क्या सोच के ये लोग वापस बुलाए उनको।
0: छाती अगर कुछ समय पहले तक हम चर्चा करते थे तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ये तीन देश ऐसे माने जाते थे जहां पर 30 गेंदबाजों का बोलबाला होता था, लेकिन अगर इस पूरे विश्व कप में हम देखें तो ज्यादातर स्पिनर्स, किसी भी देश की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने कई मैचेस में पहला ओवर स्पिनर को दिया, भारत 4-4 स्पिनर्स के साथ खेलता नजर आया, दक्षिण अफ्रीका ने भी प्राथमिकता दी, खैर पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो स्ट्रेंथ स्पिन गेंदबाजी रही है। क्रिकेट कितना बदल गया इन देशों में?
3: देखिए बिल्कुल बदल भी चुका है। अगर आप देखेंगे कि आजकल जिस तरीके से इतनी क्रिकेट बढ़ती जा रही है तो थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है पेसर्स को ग्राउंड पे, और लोड मैनेजमेंट भी ध्यान में रखते हुए आई थिंक वो सारी चीज़ देखते हैं, और उस हिसाब से इतनी इंजरीज हो रही है। एंड आई एम श्योर इस तरीके से अगर बढ़ता जाता दोनों तरफ से अब हमें स्पिनर्स देखने को मिल भी सकते हैं।
1: देखिए आप ये इस पे मैं ऐड करना चाहूँगा, 20 ओवर में 180 रन आराम से चेज हो रहे हैं, 9 रन की एवरेज, एक जमाने में 9 रन की एवरेज बहुत बड़ी मानी, आज 180 रन चेज हो रहे हैं, इजीली चेज हो रहे हैं। तो आप देखिए विकेट्स कैसे बनाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि विकेट्स बॉलर्स को हेल्प कर रहा, सब बैट्समैन विकेट हैं, कहीं पे भी नहीं लग रहा कि कोई बॉलर्स के विकेट है, तो उनमें बॉलर्स के लिए बहुत ही कम चांस बच जाता है।
2: And Soumitra, this unprecedented heat wave in England, and during the course of the World Cup, we have seen that back-to-back games get played on a single surface, so that too had a say in how spinners fared, apart from their own talent as well.
4: They should have favored the Indians. The Indians are, you know, used to heat. They're used to playing in spinning conditions. It's like it should have been like home conditions, but we did not.

0: not utilize those home conditions, because ultimately that's you. It actually is a supportive question to your previous question on Spain. The other countries have become equally intelligent. It is not only just T20 cricket, it is in all formats of cricket, where Spain has a huge domination in the say of the contest of a match. It's largely because this is workload jo hota hai aajkal din mein, this tremendous amount of workload. And that is why you need to have spinners to give you the cushion to the fast bowlers, so that there is a balance in the team. अगर आपने बोला हीट है तो स्पिन हो रहे हैं तो हम जीते क्यों नहीं, सो इट जस्ट नॉट अबाउट कंडीशंस, इट इज आल्सो व्हाट गोज इनटू द ड्रेसिंग रूम.
1: जी हाँ बिल्कुल, हर विश्व कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं देता, कुछ कहानियां भी छोड़ जाता है. आज भारत की कहानी जीत पर नहीं, एक अधूरे सपने पर थम गई, जिस सफर ने करोड़ों उम्मीदों को उड़ान दी थी वो फाइनल की दहलीज से ठीक पहले रुक गया. ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेल दिखाया और भारत का इंतजार एक बार फिर लंबा हो गया. लेकिन याद रखिए, हर मंजिल का अंत आने वाला समय होता है, यही खेल की सबसे बड़ी सच्चाई भी है. इसी विश्वास के साथ कि ब्लू जर्सी फिर लौटेगी नए जुनून और नई कहानी के साथ, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति. सौमित्रो आपका, ख्याति आपका, रविंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: थैंक यू.
3: थैंक यू.
4: और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोगों का जिन्होंने बिहाइंड द सीन्स मेहनत करके प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया. हमारी टेक्निकल टीम में है लिली, सचिन, मनोज और संदीप. हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट थे कविता, तन्मय और अमीशा. और हमारे प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान. वापस मिलेंगे सेमीफाइनल्स में, तब तक के लिए धन्यवाद.
5: प्लेयर ऑफ द मैच.
6: अभी आप ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
7: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.
8: ICC വിമെൻ T20 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ തത്സമയ വിവരണമാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത്.